सुनाए तो क्या तेरा दिन चढ़ा मेरा पीट पीछे कट चढ़कर मुंह में फूक नहीं था मेरा चुप नहीं था है अकेला बांध अपना पूरा चल